एलजीले आयो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी, लाइफ्स गुड।

हेलो जुजुल्पा जुजुल्पा जुजुल्पा थैले जेजो नेवा दबुन इंटरनल जुना दिमा सिता दुनुला मिसे अनमनान दबान रसु सुई बादान जी राजेंदर डंगोलिया तो पासो तो तना जेराम अले जेजो खा चीगो चीगो तजला जी विशेष न जिसन दशिन का नाम जुन को नखचक यात्रा पर्व अते छुन समसामयिक विषय वस्तु बके केन्द्रित ज्या फोनिन बके न्यावेगो थु ज्याजो चिगु तजलजी जेरो दुनिया थोन जी फोन इन गठन आयोजना 5367279530803 थलेके फोन इन दिसा थगु बसन क्लान दिसा नवन दिसा थगु भाइ त बुलंकित न कोताइन दिसा अले छुन समसमय विषय वस्तु बाकी चाहिँ छि जी थौ खलाबल न या अथे थन जीवन नै वइको थिति आरो अब्रो थटिया कोठिया नब्दप दुख सुख वया चुनी सुख जीवले उली बेबे जी मुखो तर दुख जुल्ला छ लिखो चो पिसाए थिति नगत गएन अझ दुख जो मन यता तना बिगु ज्या सुरु जी अले थुक्रन जीवन वगु समस्या जंकित समाधान या त याको चाहिँ कुत यपिन यको त तर छुसु मनु त थजको समस्या त समाधान याउ सिबे जीवनी सिरेका छुए त निजलिपिन चिस ख थुके थे आत्महत्या त कन ध्यागो या तन नान थुक्न बेतौ ख आत्महत्या थम थै त सिरेका छुएको छुको प्रवृत्ति ख गु प्रवृत्ति या न यकोसित तनावे लागेको थुङ्गुने थ चुनेको थासे सिबे सार्वजनिक थासे पब्लिक थासे थम थाइ सिधेक्यो अथवा थिति थै घटना सार्वजनिक ज्याचङ थोप्रवृत्ति नेता जुसा व मन या मानसिक कमजोरी जग पकान मको थके समाज व राज्य संवेदनहीन प्रणाली दुनि सोच निसतना ज्ञान वै अथवा लिपङ्गीले देशे थिति थासे मध्ये ए त्रिपुश्वर राजधानी विभाग ज्ञान जुग घटना यता कया ट्राफिक नियम व नगर प्रहरी दुन्न विवाद खनेदोको घटना ब्याउ ख थुके कारण ख जरिवाना अले कर राजस्व छु या धैपिन त हजुर छु या धैपिन त सुविधा छु मविषय दर्तनिसे राजस्व कर जग राज्य नीति थोय खलाले थङ्कुने यको उद्योग धन्दा बन्द ज्याचङ्गु कारण न थोय ख छु राज्य नीति दक्ष जनशक्ति विस्थापन याना थन विदेशमाकि उत्पादन जोगो सामान्त आय देना कमिशन नेगु कर राजस्व संकलन यागु थुल्जुक खलाले अरे उत्पादन यागु कल कारखाना उद्योग धन्दा यता पर्यटन सेक्टर यात कृषि घरेलु उद्योग यात छाया राज्य पछि बाँकी प्राथमिकता दिएको थजाउ खेन चाहिँ थौ चर्चा पर्छ या विशेषण चिसना थो व्यवसाय या धैपेन त चाहिँ राज्य पछि बाँकी छुए सुविधा मरुको अथे कर राष्ट्र योजक इम्सँग चाहिँ छ तार्के तया थैको अहिले सुविधा छुए मभिएको थियो खिन्त न छु थियो अनुभव दुसा थोया ज्याजो पके कना डिफै अहिले ज्याउदनी आज दक्षिण पाउने छन सानबाबु महर्जन पके वेकन चुयादिगु लेचनादिगु अहिले सहन ब्यादिगु अहिले थुके अनिता महर्जन सहदु थ मङ्का सह सुला सुला आइत थमे पकिसकेपछि भने